दुनिया दे मालिक साहिबे दो आलम बानी के बोहित नाम के जहाज साहिब धन गुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिन तो अपनी रचना तो इना बचना दा उचारण कर देने हजूर फरमान कर देने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना है साहब कृपा करते ने बख्शिश करते ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहते ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू देख ले पपीए नू देख ले जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या कर दे साहब बाणी विच कहिंदे ने

साहब उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। दैन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिन्हां नाम जपया सिमरन कीता भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू नाम जपण वालियां नू सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजे शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चातक ने पपिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है। भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उसदे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

साहिबजादियां दे इस महान बलिदान नू देख के सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी महिमा सारी मनुखता

मंगा रहे थे। तेरी हस्ती जे कोई है जीव, तू कदे अपनी हस्ती नु पछाणन दा जतन करे ते फिर ओदी हस्ती दी पछाण हो जा। रोज पढ़ दे करता पुरख एक ओंकार सतनाम, करता पुरख आपा तां कीते होए ना ते साहब कदे ने करते की मित ना जाने की आ। जो सुभाव है सो वर्ती आ, जो ओनू चंगा लगदा है सो वर्तना है। कीते होए दी की हस्ती है कि करते दे काम विच, क्योंकि ओ तां बीओ पूछ ना मसलत धरे, जो किछ करे सो आपे कर। आ गया आवे आ गया जाए।

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई प्राणा जी बैठे, दर्शन करन चित कीता उठे, सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखिया, कुरला उठे, साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा ले। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक की रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे को नहीं सह, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। पातशाह मैनू तुसी आग्या दियो, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे, कह लगे भाई पराणा जितन फना करना होगा, जिन्हें रचिया आपे कर ले, तैनू फना करने का फिक्र कितों पै गया, तू फना करन दी ताकत कितों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहंदे ने भाई पराणा, जे मेरे चरणा चो तबाह करन दी ताकत तेरे कोल आईया ने, ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकता, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवा मैं नहीं कर सकता। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए, ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रजा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढ़े ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढ़े ते रखिया। उह जिहड़ी अंदर जप तप की शक्ति उछाले मारन लग पई सी, सारी दबा दिती, ठंड वरता दिती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालिक की बख्शिश की हुई, धन गुरु अर्जन साहब की बख्शिश की, सहनशीलता सदका फिर भाई पराणे ने हाए नहीं की, सी नहीं उचारी, वाहगुरू वाहगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तो पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जाए ना, तो फिर हाए नहीं मुंहों निकलती, शुक्र मुंहों निकलता है। वाहगुरू

पिंड दिया तुद आपे सारी रचना तू आप ही बनाई तुद आपे कारे लाया जेहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जेहा तुद तुर लिख पाया जो रचना बना के जो लेख लिख के तू भेजे ओवे कोई पिया चलदा पंच तत् कर तुद सिष्ट सब साजी सारी सृष्टि पंजा तत्ता दे हिसाब तू बना दी कोई छेवा करे हो जे कुछ कीता होवे किसे कोल हुंदा ता है नहीं छेवा तत् इक ना सतगुर मेल तू बुझावे जिन्हां नूं सतगुरु मिल पिया उन्हां नूं सोझी आ उन्हां ने इस गल नूं समझ लिया ते जेड़े मन दे पिछे लगदे पए ने ओह रोंदे पए ने साहिब कहिंदे ने जिन्नी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना इक मनमुख करे से रोवे मनमुख रोंदे ने।

बाबा फरीद जी सूफी फकीर जिन्हां दी बाणी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने दर्ज कीती है। कहिंदे ने जिन्हां नूं अपनियां वडियाईयां दा कोई बंदा नेक काम करे ओहदी संसार वडियाई करदा, कोई भला काम करे ओहदी वडियाई करदा, ते जे अपनियां वडियाईयां वल वेख के ओह माण विच आ जावे तां साहिब सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी कहिंदी है भई ओह जिवें मूहले धर्मी पैंदा होवे ता नीवे थां तां नकानक भर जांदे ने, उच्चे थां सुके दे सुके ही रह जांदे ने। एदां वडियाईयां करन वाला बंदा रब दियां बख्शां ते रहमतां तों एदां वांझा रह जांदा जिवें ओह उच्चे टिब्बे रह जांदे ने।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरुषां ने गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया।

बिन विद्या कहाँ को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र काजर में

देवी दे दर्शन कीते सन। बड़ा वड्डा भगत सी देवी दा, बड़ी श्रद्धा वाला पुजारी है, पर वेखिया देवी झाड़ू दे रही आके चरणा ते टह पिया, कहिंदा माता तेरे दर्शन भी होए ते झाड़ू देंदी दे, लिया झाड़ू मैनू दे। तू सत्तावान है, तू शक्ति वाली है, महामाया है, ये तू की कर रही है, तू झाड़ू दे रही है। और वो पता है की कहती है, वो कहती मैं झाड़ू दे रही हूं इथे गुरु नानक ने आके बैठना, इस जगह ते गुरु नानक ने आके चौंकड़ा मारना है मेरे भगता, मैं ओदे वास्ते झाड़ू दे रही हूं, ओदे वास्ते थां शुद्ध कर रही हूं। कहिंदा माता ओ कौन है, धरती ते कोई ऐसा भी है जिदे वास्ते तैनू झाड़ू देण दी लोड़ होए? कहिंदी ये हां है, मैथों वड्डा है। कहिंदा तैथों किवें वड्डा हो सकदा, ईश्वर तो बाद तेरी शक्ति है, महामाया तेरी बड़ी वड्डी ताकत है, तेरे विचों ही मालिक ने सारा कुछ पैदा कीता है। कहिंदी नहीं, वह मैथों वड्डा इस करके कि जेड़े मेरे नाल जुड़दे ने ना उन्हां नूं मैं पदार्थ दे सकनी हां, मुक्ति मैं नहीं दे सकदी। गुरु नानक नाल जेड़ा जुड़ जांदा है ओ उन्हूं नाम देंदा है, भगती देंदा है, उच्चा इन्ना उठा दिंदा है कि कई मुक्तियां उहदे मगर मगर लगियां फिरन। मनुख दे मगर मगर चार मुक्त चारे, सिद्ध मिलके दूल्हा प्रभ की शरण परयो, मुक्त पयो चौहू जुग जानेओ, जस कीर्त माथे छत्र धरयो, राजा राम जपत को ना तरयो। ओ नाम जपण ला दिंदा, इस करके मैथों वड्डा है जेड़ा नाम नाल जोड़दा है। मेरे कोलो लोक संसारी मंगा मंगदे ने मैं देनी है, गुरु नानक नाम नाल जोड़दा है। ध्यान देना, कुछ धर्मां वाले अखौती धर्मां वाले ऐसा भी करदे ने, ओ कहिंदे ने पाप करी जाओ साडे कोल आ जाओ आपे बख्शा लवांगे, साडा इष्ट आपे तुहाडे पाप अपने मोढ़ियां ते लै के तुहानू बख्शा लवेगा। ते फिर बंदा तां कोई ना बणिया, पाप करी जावे ओदे बख्शाउण वाला कोई बैठा जिम्मेवार बन के, गल ठीक है। गुरु नानक जिम्मेवारी नहीं लैंदे, ओ कहिंदे ने मैं तां तैनू इन्ने जोगा कर देना चाहुंदा वी तू आप ही बख्शिया जावे, तेरे नाल होर वी कई बख्शे जाण। हालांकि हजरत ईसा मसीह का एक वचन है, ओदा सेंट एंड्रयू ने बड़ा सोना उलथा कीता, कहिंदा लोग गलत समझते ने इस दा, कहिंदा मेरे मगर ओ आवे जो मेरे मगर चल सकदा। ध्यान देना बड़ी खास गल, कहिंदा मेरे मगर ओ आवे, जा रहे सन दुनिया बड़ी मगर तुरी जा रही सी, ताड़ दी ताड़ रुक गए, कहन लगे मेरे मगर सिर्फ ओ आवे जो मेरे मगर चल सकदा। हुण इहदा अर्थ लैण वाला कलेगा, ओ कहणगे भी ओ बड़े तेज तुरदे होणगे, दौड़दे होणगे, या पता नहीं ओ अपने खोते ते चढ़ के बड़ी तेजी नाल जा रहे होणगे, ते उहनां दे मगर जिहड़े तेज नहीं तुर सकदे ओ रह गए। ऐसी गल नहीं, उहनां कहण दा मतलब है जिहड़ा मेरी सिक्ख्या ते नहीं तुर सकदा रुक जाओ, ना आओ मेरे मगर, जिहड़ा मेरे मगर लग के मेरा अनुसारी होके नहीं तुर सकदा ना, हमेशा महापुरश ही कहिंदे आए। मगरलिया ने गल्लां बना लईआं कि तुहाडे पाप ओ अपने सिर ते लै के तुहानूं बख्शा देणगे, तुसीं मौजां करो खाई पी चलो। गुरु नानक ऐसा बंदे नूं नहीं रहण दिंदे, गुरु नानक तां मनुख नूं सवार के साज के शुद्ध कर दिंदे ने, इन्ना पवित्र कर दिंदे ने नाम नाल जोड़ के कि देवियां वी उहनां वास्ते झाड़ू देण, उहनां मनुखां दा देवतियां विच वी सत्कार होवे। इसे करके गुरसिख दी निगाह बहुत उच्ची, जांका कहया दरगह चले सो किस को नदर ले आवे तले, जिहदी दरगाह च सुनी जांदी होवे ओह किसे नूं अख थले कानू लिआउंदा है। साहिब कलगीधर पातशाह दा सवैया रोज पढ़दे हो, पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो, मैं किसे नूं अख थले लिआउंदा ही नहीं। इह निक्कियां मोटियां ताकतां जो ओहदी रजाज चलण वालियां ने, मैं ओहदी मालिक दी ओट तकन तो बाद इह छोटियां मोटियां ताकतां वल क्यों तक्कां, क्योंकि ताकतां जिहड़ियां शक्तियां जिहड़ियां रिधियां सिद्धियां वालियां ताकतां ने, इह पदार्थ तां दे सकदियां ने, वाहिगुरू नाल सिद्धा जोड़न वास्ते तां कोई गुरु नानक ही चाहिदा। वाहिगुरू अकाल पुरख नाल सिद्धी सांझ पैदा करन दी बाणी विच नित प्रेरणा लई आपां। इथे भी महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने एक टेक गोबिंद की, एक वाहिगुरू दा आसरा, त्यागी अन आस होर किस दा आसरा नहीं, सब उपर समर्थ प्रभ, सारिया तो वड्डी समर्था वाला, सारिया तो उच्चा वाहिगुरु है, पूर्ण गुणदास पूर्ण गुणा वाला, जन का नाम आधार है, सेवका ने नाम नू आसरा बनाया, प्रभ शरणी पाहे प्रभु दी शरण पैंदे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे, इन्हां नू भरोसा है, आप रखे आप देव सी आपे प्रतपारे, दीन
दयाल कृपा ने दे सास सास संहारे इन्हां नूं इह वी मंजूर है करनहार जो कर रहे आ साई वड्याई गुरपुरे उपदेशिया सुख खसम रजाई मालिक दी रजा विच गुरुपुरे ने उपदेश दिता है तेनू बड़ा सुख मिलेगा पूरे गुरु गुरु नानक दा उपदेश है तू निरंकार दी रजा च रहो बड़ा सुखी रहेगा फिर इन्हें की पाया चिंत अंदेशा गणत तज जन हुक्म पछाता नै बिनसै नै छोड़ जाए नानक रंग राता ए ऐसे रंग च रता होया गुरमुख इनू भरोसा है मालिक मेनू छड़ नहीं जाएगा ओदी कृपा विच मैं सदा सुखी वसांगा सिमरत स्वामी किल विख नासे जिस नू याद करन नाल पाप धोते जांदे ने सुख सहज आनंद निवासे सुख सहज ते आनंद दा वासा हुंदा है राम जना को राम भरोसा राम जन रब दे बंदे ता ओदा आसरा तकदे नाम जपत सब मिटियो अंदेशा नाम जपदियां सारे विश्व से सारे शंके सारे अंदेशे मिट गए साध संग कछ पाओ ना प्रांति सत्संगियां च मिल के निरंकार ना सांझ पाउण वाले नूं ना कोई डर है ना कोई भरम है गुण गोपाल गाईयां है दिन राती वाहिगुरु दे गुण गाउंदे ने दिन रात कर कृपा प्रभ बंधन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पही प्रतीत जिन्हां दे मन च विश्वास आ गया यकीन आ गया निर्मल जस पीवें जन नीत वाहिगुरु दे निर्मल जस दा अमृत दिन रात पींदे ने उन्हां नूं किसे थां तों कोई खतरा नहीं कोई डर नहीं किसे होर दे आसरे की लोड़ नहीं भाई पैड़ा जी नूं साहिब गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ने बुलाया ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੋਥੀ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੋਥੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਜੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਆਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਲੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਕਦੋਂ ਭੇਜੋਗੇ ਜੀ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਿਆ ਦਿਨ ਮੱਥ ਲਿਆ ਘੜੀ ਪੈਰ ਮੱਥ ਲਏ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕਾਕਾ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਪਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੇਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਕਾਕੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੇਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਾ ਕੱਲਾ ਜਾਏਗਾ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਸੌ ਖਤਰੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਥੀ ਸਹਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਜ ਖਾਏ ਪੀਏਗਾ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਡਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਹਵਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਢਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਘੜੀ ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਹਵਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬਾਪ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਘੋੜਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਤਾ ਹੀਂਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਲੜਕੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਉਤਰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਥਾ ਚ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਾਕਾ ਗਿਆ ਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕੈਸੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਿ ਜੀ ਖੋਤਾ ਹੀਂਗ ਪਿਆ ਐਨ ਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾ ਨਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
तेनू अपने इष्ट ते इन्ना भरोसा नहीं जिन्ना एक जानवर ते भरोसा है कि एदी बदशगनी दे नाल सारा काम खराब हो जाए। ना तेनू बंदियां ते भरोसा जेड़े नाल चले ने, ना तेनू अन्न ते भरोसा है, ना धन ते भरोसा है, ना मुंडे ते भरोसा है, खोते ते भरोसा है तेरा। उसे वेले भाई पैड़ा जी ने आके मत्था टेकिया। तन गुरु नानक कहन लगे, भाई पैड़ा जी तुहानू एक काम कहना है कि दसो पातशाह हुक्म करो। साहब कहन लगे, इंज करो संगला दी पजाओ सतवचन पातशाह। साहब कहन लगे, उथे सुनिया है कि धन गुरु नानक ने कोई पोथी रची सी प्राण संगली, उथो दे सिद्धां दे हुक्मां उहदे प्रसवाला ते साहिबां ने उहदे उत्तर दित्ते सन ते गुरबाणी संचय करनी है, लै के आओ पोथी वेखीए, जे गुरबाणी च शामिल करन जोगी होवेगी ते कर लांगे। प्राण संगली पोथी लै के आओ सत बचन दी। कदों जावा? साहिब कहन लगे, हुणे चले जाओ, रात दा समां है, हुणे चले जाओ, साडे वल्लों तां आ गया, जदों मर्जी चले जाओ। कहन लगा सतबचन महाराज, मत्था टेकिया उठ के तुरन लगा। साहब कहन लगे, भाई पैड़ा जी कोई बंदे चार नैल ना लै जाओ। हथ बन के कहन लगे, पातशाह घर बाहर तेरा परवासा, तू जन के है संग, मैं बंदे नाल काले नहीं लियाने। साहब कहन लगे, कोई अन्न जल लै जाओ नाल, कोई अन्न पानी। पंडित जी सुन रहे ने, भाई पैड़ा जी कहंदे ने, पातशाह जिथे जाना है अन्न मालिक ने देना है, तेरी रजाव जिथे जाना मिल जाना है, जिया सारिया की संभाल तू आप करने वाला है। पातशाह मैं अन्न कादे लई नाल चुका, जिथे जावांगा मिल जाएगा। साहब कहन लगे, फिर इस तरह करो कोई धन लै लवो। कहन लगा, महाराज धन की करना है, एवं खब खा दे खतरे मुल लवांगा। साहब कहन लगे, लम्मा सफर है मालिक, तुसी आप ख्याल रखना है, मैं धन भी की करना। साहबा ने हजूरी च पई माया च एक टका चुक के अगे किया, इसने झोली च पुआ एक टका। ध्यान देना, किथे अमृतसर तो लैके लंका तक का सफर, उथो वापस आना है, एक टका कोई खर्चा तो नहीं ना। पर भाई साहब ने झोली च महाराज की बख्शिश समझ के पुआ लिया, कुट के पले बन लिया, इतिहास गवाह है। उसे वेले भाई पैड़ा जी तुर पे, इकले जाके संगला दीप तो पोथी लैके आ। फिर उन्होंने हकीकत राह मुकाम एक पोथी आप ही लिखी, जिदे विच गुरु के सिखा दे राह जिथे जिथे दर्शन होए, ते राजे शिवनाब दी संतान जो कुछ कर रही सी वो सारा कुछ उस हकीकत राह मुकाम च दर्ज किया। उस कले बंदे ने एडा सफर बिना संगियां साथियां दे, बिना धन दे, बिना अन्न दे, किदे सिर ते कर लिया? परमेश्वर दे आसरा, एक निरंकार दा आसरा, जिन्होंने बाणी अनुसार

कालू दे घर माता तृप्ता दी कुख चो जदो जन्म लिया दौलतां दाई ने वेख्या के जिस कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है ओ सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है।